बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 7 बज्यो।

0: समी छो 14 के में बोदे लोटी पर दी रो पहले ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखई हमरो
1: खई खई बहु कोई लोटरी भर दिलवा
2: आंगी समी जो लोटरी पर दियो छांताई गुदी
1: भर दी आ भर दिवा लोटरी खाली पर दिम बा सैली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खनै बने खै बिसा खै मै विश्वास आनन फोनै खाले पनि आफै विवरण खै मै आपिन खबै बने वित्तीय संस्थाई के पासवर्ड पिन खै मै आरी सुमी बैंक आफै बने आरी
3: सतर्क त न ठगि सक्या बसेन
2: सिद्धार्थ ब्याकर क्यारे जन हितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 8 बज्यो।

0: बीई सिभिल फर डिप्लोमा होल्डर्स कार्यक्रममा भर्ना खुल्यो।
1: प्रवेश परीक्षा असार 25 गते बिहिबार।
0: थप जानकारीका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाङ्गु नारायण 4 भक्तपुर।
2: फोन 01-5221-5100 97418-2096।
0: वेबसाइट www.nec.edu.np।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: निकट मा दीदी बहिनी विकट मा दीदी बहिनी।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक छ बज्यो।

0: 咧几多个人，我就可以推推荐个例子。原来见到好，昨天见到你家属，到了这里问不讲，见到见到他那条，那边来，你的爸爸在去，你的村里在，稍微来少点，你的这谁来？
1: सबैको नजिक ब्याङ्कमा खाता छ।